इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: रूहानी आवाज है भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा जी की एंड अ ब्यूटिफुल वर्जन ऑफ दिस ब्यूटिफुल गणपति वंदना. एंड ऑफ कोर्स आई थिंक यू विल एग्री विद मी, ओनली एन अनूप जलोटा कैन कैरी अ सॉन्ग दिस ब्यूटिफुली. जी हाँ दोस्तों, आप गीतांजलि सुन रहे हैं और कुछ ही क्षणों में हम आपको बताएंगे कि आज के कार्यक्रम में हम क्या करने जा रहे हैं.
1: Lotus FM. Yeah. Yeah. Share the experience.
0: तो चलिए हम आपको बताएं कि आज के कार्यक्रम में हम क्या करने जा रहे हैं. कुछ ही क्षणों में हम थोड़ी सी हिंदी सीखेंगे एक बहुत ही नेक विचार के साथ. एंड टुडेज थॉट इज रियली रियली वेरी स्पेशल. आज के खास कलाकार हैं आशा भोसले जी. आपको याद होगा कि आशा जी का बर्थ एनिवर्सरी वॉज ऑन द 8th ऑफ सितंबर, सो वी सेलिब्रेट दिस आइकॉन ऑफ द हिंदी लैंग्वेज एंड ऑफ कोर्स द हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री एज वेल. और प्रोग्राम के दूसरे भाग में हम थोड़ी सी हिंदी सीखेंगे एक बार फिर से एक बहुत ही लोकप्रिय idiom के साथ. और आज का idiom है दूध का दूध और पानी का पानी. दूध का दूध और पानी का पानी. एंड इफ यू लाइक टू कमेंट ऑन आई द आशा जी यू डी खो द idiom, रिमेंबर दैट आवर व्हाट्सएप लाइन नंबर इज 0716137803. और आज हिंदी दिवस है. टुडे इज हिंदी डे. सो वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट ऑन द प्रोग्राम एंड शी इज द वेरी चार्मिंग श्रीमती रेनिशा मोतीलाल, द प्रेसिडेंट ऑफ द हिंदी शिक्षा संघ. एंड रेनिशा जी हमें एक बहुत ही खास संदेश देंगी हिंदी दिवस के प्रति. सो लॉट्स टू लुक फॉरवर्ड टू ऑन टुडेज एडिशन ऑफ गीतांजलि. और कुछ ही क्षणों में हम थोड़ी सी हिंदी सीखेंगे.
1: यू आर लिसनिंग टू गीतांजलि. यू आर लिसनिंग टू गीतांजलि. लोटस FM.
0: It's now time for us to learn some Hindi. As we always do, we share with you something very beautiful in the Hindi language and we give you the English equivalent thereof. And thereafter, we have a look at some of the words and, if time permits, some interesting grammatical constructions as well. So, today's thought reads like so. Prasannata vah aushadhi hai jo dunya ke kisi bhi bazaar mein nahi, sirf apne andar hi milti hai. प्रसन्नता वह औषधि है जो दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं सिर्फ अपने अंदर ही मिलती है. आई थिंक यू वुड हैव पिक्ड अप सम ऑफ द वर्ड्स. सो लेट्स शेयर विद यू व्हाट दिस मींस इन इंग्लिश. इट सिंपली ट्रांसलेट्स लाइक सो इनटू इंग्लिश. हैप्पीनेस इज दैट रेमेडी दैट कैन नॉट बी फाउंड इन अ मार्केट प्लेस एनी वे इन द वर्ल्ड. इट कैन ओनली बी फाउंड विद इन वन सेल्फ. Okay, nice one to know and to remind ourselves that we are responsible for our own happiness. So let's take a look at each of the sentences. So the first one says, Prasannata vah aushadhi hai. Prasannata refers to joy or happiness. Could mean contentment as well, depending on the context. So Prasannata vah means that aushadhi hai. Aushadhi refers to medicine or a remedy, generally a reference to a natural remedy. So Prasannata vah aushadhi hai. Jo, meaning that in this context, dunya ke kisi bhi bazaar mein nahi. Dunya, meaning the world, ke kisi bhi bazaar. Bazaar refers to a marketplace. So in any marketplace in the world, cannot is in the word nahi. Sirf apne andar hi milti hai. Sirf means only, apne ourselves, andar means within, as in within ourselves. Hi milti hai, can be found. Achha. So a good one there. Prasannata vah aushadhi hai jo dunya ke kisi bhi bazaar mein nahi, sirf apne andar hi milti hai. And once again, its happiness is that remedy that cannot be found in a marketplace anywhere in the world. It can only be found within oneself. So once again, Prasannata refers to happiness. Aushadhi refers to medication or medicine. Dunya, you do know, means the world. Bazaar refers to a marketplace. And the next good word to know is andar. Andar simply means within or inside. Some interesting grammar here. Prasannata is feminine in gender and dunya is feminine in gender. So we will say sirf apne अंदर ही मिलती है बिकॉज द वर्ड प्रसन्नता इज फेमिनिन इन जेंडर एंड वी विल से अंदर ही मिलती एंड नॉट मिलता. इंटरेस्टिंग, जॉय इन दिस केस प्रसन्नता is feminine in gender. I trust you enjoyed that piece, and if you want to listen to it once again, I'm going to give you a quick English translation. Happiness is that remedy that cannot be found in a marketplace anywhere in the world. It can only be found within oneself. And the Hindi reads, Prasannata vah aushadhi hai jo duniya ke kisi bhi bazaar mein nahi, sirf apne andar hi milti hai. So on the occasion of Ganesh Chaturthi, let us all turn within and try to find that joy, that happiness, that contentment within ourselves, because that is where it really is. Thank you for tuning in. बिल्कुल दोस्तों, आप गीतांजलि सुन रहे हैं और मैं आपको फिर से याद दिलाते हैं कि प्रोग्राम के दूसरे भाग में हम एक बार फिर से थोड़ी सी हिंदी सीखेंगे. वी लर्न अ लिटल मोर हिंदी इन द सेकंड हाफ ऑफ द प्रोग्राम एंड वी आस्क यू to decode an interesting idiom that we share with you in Hindi, and today's idiom is doodh ka doodh or pani ka pani. What do you think that means? So we'll decode that a little later in the program. Aur hum ek chota sa antaral lenge abhi, aur uske baad hume saath dengi Lata Mangeshkar ji.
2: To all pedestrians, please wear light or white clothing when walking at night. Headlights cannot pick up dark clothing soon enough to save a life. And to all road users, rest every 200 kilometers or at least every 2 hours. If you feel fatigued, pull over safely. Falling asleep at the wheel leads to head-on collisions that are almost always fatal. And the rules are simple. Don't drink and drive. Don't drink and jaywalk. If you need to party, stay over. Brought to you by the Department of Transport, moving South Africa to new heights.
1: You are listening to Geetanjali. You are listening to Geetanjali. Lotus FM.

0: And you will agree with me, that's one of the most wonderful and popular songs dedicated to Sri Ganesh Ji of recent times. So a very quick word here. I do want to say that when we spoke about those of our good listeners who got the idiom correct, I missed out a name, and that was the name of Professor Bhagwan Din. So well done to you. Jya dosto, program hai Gitanjali, aur jaise ki maine kaha, program ki shuruaat mein, aaj Hindi Divas hai, and today we have a very, very special message from somebody who's very special. She's the ever gracious president of the Hindi Siksha Sangh, and she is Panita Renisha Motilal, and she shares a message on National Hindi Day, known as Hindi Divas. Here's the voice of Srimati Panita Renisha Ji.
1: Prem Namaste. Main hu Renisha Motilal. Hindi Shiksha Sangh ki taraf se is Hindi Divas ke avasar par sabhi ko hardik shubhkamnaye. Hindi keval ek bhasha nahi hai, balki yah hamari sanskriti, parampara, itihas aur virasat se जुड़ने का एक सशक्त माध्यम है। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए हिंदी का संरक्षण और संवर्धन हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारा दायित्व है कि हम अपने बच्चों को हिंदी सीखने, बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए प्रोत्साहित करें। हमारी हिंदी भाषा के परिवार इस यात्रा में आपके भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भूमिका आज निभा रहा है, आगे भी निभाना चाहिए। भाषाएं तभी जीवित रहती है जब हम उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हिंदी के सिपाहियों हमारे आसपास है, लेकिन हिंदी को जीवित रखना केवल शिक्षकों या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। आप सहमत होंगे, हिंदी की मिठास शब्दों में ही नहीं है, उसके भावों और अपनत्व में भी बसती है। जब भाषा बचती है तो हमारी संस्कृति बचती है, और जब हमारी संस्कृति बचती है तो पहचान जीवित रहती है। तो आइए इस हिंदी दिवस के अवसर पर हम एक संकल्प लेते हैं कि हम हिंदी को केवल हिंदी दिवस पर ही नहीं, बल्कि हर दिन अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। हम हिंदी बोलेंगे, हिंदी सीखेंगे और गर्व से हिंदी को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए मिलकर हिंदी की ज्योति को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाइए। मेरी तरफ से प्रेम नमस्ते। हिंदी भाषा अमर रहे।
0: धन्यवाद पनीता रेनिशा मोतीलाल जी उस बहुत ही खास संदेश के लिए। एंड ऑफ कोर्स टुडे इज हिंदी दिवस। इट वाज अ डे व्हेन द लैंग्वेज हिंदी वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जय दोस्तों, आप गीतांजलि सुन रहे हैं। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं मुकेश जी की रूहानी आवाज के साथ।
2: मैंने

दिल को दोस्तों, आप गीतांजलि सुन रहे हैं। खेत की बात है, मगर समापन की घड़ी करीब आ गई है और इसका मतलब है कि अब मुझे शुभ रात्रि कहनी है। और मैं आपको याद दिलाती हूँ कि 7 बजे के समाचार के बाद पारी आएगी टॉक एट 7 की। अगले हफ्ते अगर भगवान की मर्जी हो तो हम जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरी ओर से नमस्कार और शुभ रात्रि।